हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा, नियर नहीं का चीज न आहे, सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: 91.6 सुंद जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सुंद जो आवाज बुदंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।

0: के मैनिफेस्टो का पार्ट रहा है। ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए आपको छोटे यूनिट्स पे जाना होगा, मैनिफेस्टो का भी पार्ट है।
1: सिंध असेंबली जा मेंबर सूमरवार डी नव सुबह के मामले ते ईवान में बहस लाए तैयार। पीपुल्स पार्टी के एम क्यू एम के सिंध के विरांगे वारो ख्वाब न दिसण की सलाह। सूबाई वजीर ने एम पी चयो तो सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एक न पर केतरा ही भेरा ठहराव मंजूर थी चुका है। सिंध असेंबली एक भेरो वरी ठहराव मंजूर कर वी। नंढड़ी अस्पताल न संभाले संदड़ सूबो कि संभालींदा। नव सूबह बाबत फैसलो अवाम जो हों। पीपुल्स पार्टी अवाम से गड है। सिंध विरण की गाल कवाम ही गड न एम क्यू एम के दोस्त के ठहराव की हिमायत करण घुर्जे। मुखालिफ दुर्रगवान अली खुर्शेदी उन्होंने पुरानो मुतालबो रो है तो नव सूबह के मामले से बहस थियण घुर्जे, पर हाँ पीपुल्स पार्टी वार पा बहस लाय रथ जमो कराई है। गवर्नर्स के बेहतर बनने लाइ इंतजामी यूनिट्स डां वनो पवन्द। तहरीक इंसाफ के मेंबर सजाद सुमरे भी नवन सूबह की मुखालिफत कंदे पैरिया आवाम जहां मसला हल कर डेखार सूबह की गाल कयो। सऊदी अरब के माहौलियात वे वजीर अब्दुलरहमान अब्दुल मोहसन फजली जो जी एच क्यू जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। गजल दिलचस्पी वार मामलों के ख्याल की डेवट आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल पाक सऊदी बहरान लागापन के हथी जण स्ट्रेटजिक भाईवारी के मजबूत बनाने के अजम जो इजहार किया। सऊदी वजीर इलाके अमन लाइ पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के सराहंदे बिन्हीं मुल्क विच में सहकार वधाने की ख्वाहिश जाहिर कई। सऊदी वजीर फील्ड मार्शल से मुलाकात का पहले वजीर अजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कई। शहबाज शरीफ चयो तो पाक सऊदी तुर्किया में थियल मक्का मुआहदे बद टई मुल्क वेझो आया।
2: मटियारी के हो तो
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो इन आसान जवाब यो आ बार भी असावट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असान जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। वार के साथ नाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें।

सिंध असेंबली जा मेंबर्स सूमर वारे डीं नवन सूबन के मामलन ऐवान में बहस लाए तैयार। पीपल्स पार्टी जे एम क्यू एम के सिंध के विरहांगे वो ख्वाब न डिसण की सलाह। सूबाई वजीर एम पी एज है सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ एक न पर केतरा ही भेरा ठहराव मंजूर थी चुका है। सिंध असेंबली एक भेरो वरी ठहराव मंजूर कर वी नंढड़ी अस्पताल न संभाले सकंदड़ सूबो कि संभालींदा। नवन सूबन बाबत फैसलो अवाम जो हों। पीपल्स पार्टी अवाम से गड है सिंध विरहण की गाल कंदड़ से अवाम ही गड न है। एम क्यू एम के दोस्तों के भी ठहराव की हिमायत करण घुर्जे। मुखालिफ धुर अगवान अली खुर्शीद है पुरानो मुतालबो रो है नवन सूबन के मामले से बहस थे घुर्जे पर हाँ पीपल्स पार्टी वारन पान बहस ला रिथ जमा कराई है। गवर्नर्स के बेहतर बनाने लाए इंतजामी यूनिट्स डां वजनो पवो। तहरीक इंसाफ के मेंबर सजाग सुमरे भी नवन सूबन की मुखालफत कन्दे पे आवाम जहा मसला हल कर डेखारो सूबन की गाल कर।

0: मौसमियात खाते पंजाब ए के पी के में अॼु खां तेज़ बरसातनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अक थी करे छॾी। अवाम खे लैंडस्लाइडिंग खां मोहतात रहण जो मशवरो। मौसमियात खाते चयो आहे त सुभाणे खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ए के पी के में तेज़ बरसातूं पवंदियूं। मथां इलाइक़नि में लैंडस्लाइडिंग जो बि ख़तरो आहे। ऐं कोट जी भरिसां लोडर रक्षा वाह में किरण सबबि ॿुॾी वियल 4 ॿारनि मां 3 जो बि लाश हथ अची वियो आहे। 12 वरनि जे मीर मोहम्मद गोपांग जो 36 कलाकनि बाद मेहराण भरिसां लाश मिली वियो आहे। उन खां अॻु 13 सालनि जे जुनेद ऐं लाहौती गोपांग जो लाश मिलियो हो। 11 वरनि जे मुंतज़िर मेहदी गोपांग जी ॻोल्हा जारी आहे। नींगर मीर मोहम्मद गोपांग जो लाश पहुचण ते इलाइक़े में सोग छाइजी वियो आहे। आलिम अखियुनि सां बड़े मिटी माउ हवाले कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी कड़ो नहीं।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दहन साल छोथी दिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो दहन साल घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वा जो दौरो ISPR मूजिब फील्ड मार्शल के POF जे पैदावारी सलाहियतन मुल्क जे दिफाई सनअती बुनियाद के मजबूत करण में इदारे जे किरदार बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग डिनी। POF जे मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन मकामी सतह ते मुख़्तलिफ़ फौजी सामान जी तैयारी बाबति आगाह कयो वियो। खेस ब्रीफिंग डिनी वई त POF जिदत पाकिस्तान जे दिफाई पैदावार जे सलाहियतन में वाध लाइ अहम किरदार अदा करे रहियो आहे। फील्ड मार्शल मुकामी तौर ते तैयार कयल हथियारनि ऐं गोला बारूद जी टेस्ट ऐं आज़माइशनि जो मुआइनो कयो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दौरो। इमीग्रेशन काउंटर्स ते पहुची वहिंवार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादिल इंतज़ाम मौजूदु रखियो वञे। इमीग्रेशन जो अमल कंहिं बि सूरत में न रुकणु घुर्जे। जाली दस्तावेज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। ईरान जे इजाज़त खां सवाइ कंहिं बि जहाज़ खे आबनाए अर्ज़ मां गुज़रण जी इजाज़त न आहे। पासदारनि इनकलाब अमरीकी सदर जे आबनाए अर्ज़ खोलण वारे बयान ते रदि अमल। पासदारनि इनकलाब मूजिब अमरीका तेल जूं क़ीमतूं क़ाबू करण ऐं पंहिंजूं नाकामियूं लिकाइण कूड़ा बयान ॾेई रहियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयूं ख़तम न थींदियूं तेसी ताईं आबनाए अर्ज़ ऐं अमरीकी मुदाख़लत बर्दाश्त न कबी। अमरीका वेनेज़ुएला 58 अरब बैरल खां वधीक तेल जे ज़खीरनि ते कंट्रोल हासिल करे वरितो। अमरीकी सदर जो चवणु आहे त अमरीका वेनेज़ुएला सां दुनिया जे तारीख़ में तेल जो सभ खां वॾो मुआदो कयो आहे। हिन मुआदे सां वेनेज़ुएला खे वॾी कामयाबी ऐं खु़शहाली मिलंदी। अमरीका ऐं वेनेज़ुएला में लाॻापा अघ खां वधीक मज़बूत थींदा। मौसमियात खाते पंजाब ऐं KPA में अॼु खां तेज़ बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अॻकथी करे छॾी। अवाम खे लैंडस्लाइड खां मुहतात रहण जो मशवरो। मौसमियात खाते चयो आहे त सुभाणे खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ऐं KPA में तेज़ बरसातियूं पवंदियूं। मथाहिन इलाइक़नि में लैंडस्लाइड जो बि ख़तरो आहे। शहदाद कोट में घर मां मुबैना बेदख़ल करण ख़िलाफ़ जमाली बिरादरीअ जे सॾ ते शहर में शटर बंदि हड़ताल। जमाली बिरादरीअ जे माण्हुनि चयो त लखपत रोड वारे इलाइक़े में व्याजखोर ऐं कब्ज़ा माफ़िया पैसा न ॾियण तां घर खां बेदख़ल करे छॾियो आहे। इल्ज़ाम हेठि आयल वापारी जगदेश कुमार चवणु आहे त जॻह जो 11 साल अदालत में केस हलियो। फ़ैसिलो मुंहिंजे हक़ में आयो आहे। ब्लैकमेल कयो पियो वञे। ऐं कोटड़ी जी बरसा मीरवा केनाल में ॿुॾी वियल 4 ॿारनि जो लाश बेहथ अची वियो। ॿ ॾींहं अॻु रक्षा हूंदो थियण सबबि 4 नींगर मीरवा केनाल में ॿुॾी विया हुया। 36 कलाकनि बाद ॿुॾी वियल 12 वरियनि जे मीर ममन जो लाश बेहथ कयो वियो। लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि. उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान. तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे. कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे. तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए.
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 नेटवर्क. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: कोटड जी भरसा मीरवा केनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश बे हथ बडिया गो रक्षा हुंदो थियण सबब चार नीगर मीरवा केनाल में बुडी वया। छटीन कलाकन बाद बुडी वेल बारन वरन जे मीर ममन जो लाश बे हथ कयो वयो। नीगर जो लाश घर पहुंचण ते कोहराम मची वियो।
1: कुंडरी वेझो फसल जे भेल तां बिन धुरिन में झेड़ो कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबब पंज ॼणा मरणी। ॻोठ लखानो रिंद में फसल जे भेल तां रिंद ऐं भील बिरादरी में झेड़ो थियो। झेड़े में कुआड़ियूं ऐं लठियूं सबब भेल बिरादरी जा पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मीनि खे तालके अस्पताल कुंडी नियो वियो। हमिलो कंदड़ फरार थी विया।

0: में सिंधु दरिया जो पाणी तेजीअ सां ज़मीनूं पाइण लॻो। बोड़ा पतण वारे हंधि पाणीअ जो दबाव वधण सबबि सूरत हालगणतीअ जोगी। पाणीअ जो तेज़ वहकिरे ऐं ज़मीन में खाद सबबि ॻोठ में क़ाइम स्कूल लुड़ी वियो। मुतासिर ॻोठाणनि जो हुकूमत खां बोड़ा पतण वारे हंधि हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जो मुतालबो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त थियो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफ़एम 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे पॉइंट सिक्स
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो।

0: ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: अक्सर मां जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असानी एरिया हाई रिस्क ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे.
4: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी पिया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Urea Granular. Mithi jo
6: Prashansa hai maqami satah te तैयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जे टेस्ट ट्रायल जो मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतनि ऐं टेक्निकल में जदत जो अज़म वरजायो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो। जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जे हिदायत। घरू वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुताबिक़ इंतज़ाम हुजण घुर्जे। इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुर्जे। ईरान जी इजाज़त खां सवाइ को बि जहाज़ आबनाहर मज़मा गुज़री न सघंदो। पासदारनि

0: عامر کی صدر جے اپنا ارمز کھولن والے بیان تے رد عمل. پاسداران انقلاب موجب امریکہ ناکامی لکھان لائے پورا بیان دے رہا ہے. ایران خلاف جیس تائیں عامر کی فوجی کاروائیاں ختم نہ تھیں تیس تائیں اپنا ارمز کی مداخلت برداشت نہ کبھی. अमेरिका वेंजुएला के 65 अरब बैरल का वधीक तेल के ज़खीरन ते कंट्रोल हासिल कर वरतो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वेंजुएला सां दुनिया की तारीख में तेल जो सब का वॾो मुआहिदो कयो आहे. उन मुआहिदे से वेंजुएला के वरी कामयाबी ए खुशहाली मिलंदी. अमेरिका ए वेंजुएला में लागापा वधीक मजबूत थींदा. सिंध में एचआईवी के वधंदड़ केसिस की शफाफ जांच लाइ आजाद कमीशन जोड़ियो वे. एमक्यूएम के आमिर सदीकी ठहराव सिंध असेंबली में जमा कराए छो. कराची के फिलिका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केसिस की जांच जो मुतालबो. लागापे आफिसर के भी अहदे तां हटाने की घुर. कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम. केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर समेत समूरो मानून की लिस्ट पेश करण की हिदायत. कमीशन गुजरे ढीह थियल जांच के लिखत में हुकुम जारी कर छो. अदालती कमीशन है मीर रजा जो सब का पे लाश दिसंदड़ नर्सरी मुलाजमन के भी नोटिस जारी किया वे. पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार भी पेश किया वे. कोट जी भरसा मीरवा कैनाल में बुडी वेल चौथे बार जो भी लाश हथ आयो है. 36 कलाकन बाद बुडी वेल 12 वरन जे मीर मोहम्मद जो लाश भी हथ कयो वयो. बडी अग रक्षा उंदो थेण सबब चार नींगर मीरवा कैनाल में बुडी वया हुआ. टिन नींगरन जा लाश गुजरे लिए मिलया हुआ. कराची की अदालत 8 साल के नींगरी हबीबा के गटर में किरी फोत थियण वाले केस जो फैसलो बुधाए छो. कराची वार्ड बोर्ड के महीने अंदर नींगरी के वालदेन के 1.5 करोड़ रुपया मुआवजो अदा करण जो हुकुम. 2021 में 8 साल की नींगरी हबीबा हॉक्स बे के शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वही हुई. मटियारी भरसा नायच ए खोसा बिरादरी के बिन धुरन में थियल झेड़े जो एक जख्मी पुत झेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलिद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दिनो. खोसा नायच धुरन में मामूली गाल थियल झेड़े में 5 जणा जख्मी थे. कुंडरी वेझो फसल के भेल त बिन धुरन में झेड़ो कुआरियों लठू लगन सब 5 जणा जख्मी. गोठ लखानोरन में फसल के भेल तां रिंद भील बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थे कुआरियों लठू सब भील बिरादरी जहा 5 जणा जख्मी थे. शादातपुर खां भिटशाह ताईं सूफिन जो सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ़ प्यादल मार्च शुरू. मांझी फकीर जी क़यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन ऐं शहरनि जो वॾे अंग में शिरकत. अॻवाणनि चयो आहे त सिंध सूफिन ऐं वलियुनि जी सरज़मीन आहे. सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश केर बि क़बूल न कंदो. हैदराबाद में सरकारी अस्पतालन के नर्सिंग ए पैरामेडिकल स्टाफ पारा अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करण खिलाफ रैली. मुजाहिरन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद तई प्यादल मार्च के एहतजाज कर. मुजाहिरन है अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करण वो फैसलो कबूल न है. फैसलो वापस वो वे. सखर में मंशियात के विकरे खिलाफ शहरन जो एहतियात. मंशियात विको कदड़न खिलाफ कार्रवाई के मुतालबो. साइट एरिया थाने की हद अलाहाबाद कॉलोनी के रहवासन मंशियात के विकरे खिलाफ एहतियात किया. मुजाहिरन मौजूद पुलिस शिकायत बावजूद मंशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई न करे रही है. नओ डेरो भरसा कचे के इलाके में सिंधु दरिया जो पानी तेजी से जमीनू पान लगो. बुढ़ा पतण वाले हंध पानी जो दबाव बदण सबब सूरत हाल गणती जो भी पानी के तेज वेकरण जमीन में खाद सबब गोठ में कायम स्कूल लुड़ी वो. मुतासिर गोठान जो हुकूमत का बुढ़ा पतण वाले हंध हिफाजती पाव वठण जो मुतालबो.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो. मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार

0: असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहे, ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे, ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लायल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए, जब एक इंसान से हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो उसके पास हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जल्दी से बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं, लेकिन जब इंसान खुद किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसके पास इतना जल्दी उस प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं आता? ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ। बिल्कुल जी, पूछ के इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा और जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपके बिल्कुल मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस करते जाइए। ऐसे ही आप लोगों की मोहब्बतें अगर रही तो भाई क्या बात है, हम तो धन्य है जनाब। और साथ साथ आप ऐसा कीजिए, फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हो गया है जनाब, यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने चाहते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। आपने बस कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं आप स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ती।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो, उतरदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: एक मजबूत बुनियाद है। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजा। इसके हर दो अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा और पैदावार में किसान ताकत मिले, भरपूर खिले।
1: अभी बुधोपिया हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिर्पो खास मटियारी सगरन मेहरापुर मातिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलते के नाम मस्ती। बिल्कुल जी, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं, मुझे 888 पर मैसेज करते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ फेसबुक पर सुनते जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है उनको भी वेलकम कहा जाता है, बाकी जो लोग हमें सुन रहे हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदी। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी अभी सुना है, स्टार्ट किया होगा, उनको नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम में सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछा है कि एक इंसान जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो जल्दी से दे देता है, जल्दी से बता देता है कि भाई हाँ तुम्हें ये मसला चल रहा है, इसका हल ये हो सकता है, लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम का टाइम आता है, अपने लाइफ में मसले चल रहे होते हैं, तो उनका हल, उनका सोल्यूशन उसके पास इतना जल्दी क्यों नहीं आता। सवाल का मुझे जवाब बताइए, जल्दी से मुझे ज्वाइन करते जाइए क्योंकि आपके मैसेजेस प्रोग्राम की एक जान होते हैं। ओके, इसी के साथ साथ बिल्कुल आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और आपके मैसेजेस की जान है, बिल्कुल आते हैं, बहुत ज्यादा वाली बातें हैं क्योंकि आप लोगों के साथ करनी है, तो जरा मैसेजेस की जाने बात आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ ही सबसे पहले जो मुझे मैसेज किया है वो चाचा खालिद जुने जो ने किया है, कहते हैं बेटा सिद्धू अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, कहाँ गायब हो, कोई खबर चार ही नहीं आपकी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी। और उसके अलावा फहीम शेख हमारे साथ कहते अदा अला खुशाही सॉन्ग बिल्कुल तांजी पसंद जो गानों लाया था फहीम बात आज मोहब्बत वन प्रोग्राम बुध पाया। और कश्मीर से अखलाक बलोच हमारे साथ ही हाय सिद्धरा नाइस शो, गानों लिखे हुआ था हाजिर गानों बुलायू था। अच्छा, मेरे से गड मौजूदा चाचा खालिद कहते हैं बेटा सॉन्ग की रिक्वेस्ट है ओके चाचा तो आज गानों वालायू था। और फहीम भाई कहते हैं अदा कमेंट ओपन होते हैं तो सर खालिद के कमेंट्स के कमेंट्स भी रीड करता हूँ और अब चुप होकर शो सुन रहा हूँ, मेरा सलाम देना सर को। ओके जी, आपके सलाम सर तक पहुंच चुके हैं, वैसी अच्छी बात है, सुकून से प्रोग्राम सुने अब, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। और हमारे साथ है ये गुड आफ्टरनून एंड वेलकम स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू प्यारे भाई जान एमजेड भाई, मासूम एमजेड भाई, क्या बात है जी, कितने मासूम है बताएं जरा। और बाकी तो ठीक है, आपको वेलकम कहते हैं। और उनके अलावा आसिम हमारे साथ हैं, आसिम कहते हैं आपी शिद्दो कैसी हो, आपी शिद्दो बिल्कुल ठीक ठाक है, और गाना भूला है आपने भी, मैं गाना चलाने की कोशिश करूंगी। और लिखा है अपना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते तो भाई किसी और को मशवरे क्यों देते हैं लोग, ये भी तो सोचे ना कि हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जाहिर सी बात है ऐसी तो नहीं होती कि दूसरों की प्रॉब्लम है तो भाई चलो इजी ले लेते, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ऐसा मत किया करो। और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम गोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई, शो तमाम जबरदस्त आए, थैंक यू वेरी मच हबीबुल्ला भाई। और हैं जी फहीम कहते हैं टॉपिक पता नहीं दादा आप बताएं, मैं तो बताऊंगी लेकिन आप भी तो थोड़ा सा बताएं ना। और जी चले बिल्कुल बताने और सुनने वाली जो बारी ना ये पूरे प्रोग्राम में ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमारे पास जो गाने आप लोगों को सुनाने के लिए तो जरा हम वो गाने भी साथ साथ सुन लेते हैं। ये है जी एक अच्छा सा गाना, और एआई तो लिमिटेड था मतलब इंग्लिश और उर्दू गाने बनाने के लिए, लेकिन सिंधी गाने, अब सिंधी गानों की तरफ भी आ चुके अब कैर नहीं सिंधी सिंगर्स का भी, तो चलिए ये गाना एंजॉय करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन गाना अच्छा है, एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं चलते गाना मस्ती, आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है, आइए मिलकर ये प्यारा सा गाना एंजॉय करते हैं।

मुझे तो कौन है भाई। हाँ, जोश कराने वाले तो गाने आजकल बन ही रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत ऐसा सुपर कूल सा गाना है। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल आपका साथ जो है वो प्रोग्राम है हमारे साथ साथ। और आप जो फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और इसी के साथ साथ टॉपिक को जरा फॉलो कीजिए। ये छो आ इंसान जो है दोगलो छो हूँ इन गाल जी मुख्य खबर कोई आए पर मुख्य बुधाय जदी तवां के बेखे पांजे मतलब के मसले जो हल बुधाईना ता तवां मिंटो न मसले जो हल अची वेंदो आहे। पर जदी तवां जी पांजी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अची वेंदो ता उन प्रॉब्लम के सॉल्व करण में एतरो टाइम छो लगाईंदा हो। पाण वट भी तवां वट ओ हीअं चुटकी वजाए भई हल अची वेंदी न, ई नाहे हूंदो बेन जे लाइ भई इंसान थोरो घटि सोचींदो आहे, ई न हुजणु घुरिजे। बिल्कुल जी, तव्हां सां मौजूदु आहियां

चले समझ में थोड़ा भले कमी आए लेकिन गाने की वाइब बड़ी अच्छी थी, सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये जो आपके गानों की फरमाइशें आती जा रही है ना, अच्छा ये सिर्फ मुझे लगता है कि जब मैं बोलती हूँ तो ऐसे तूफान तूफान सा फील होता है, ये मुझे लगता है या फिर आपको भी ऐसा महसूस होता है? मुझे बताएं जरा थोड़ा सा ताकि मैं इस चीज को समझ जाऊं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर आपके यहाँ भी आवाज ऐसी आती है कि ऐसा लगता है भाई सिद्रा जो है वो बात करे लेकिन साथ साथ तूफान भी चल रहा है। आप बताइएगा। और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में है तो वो भी जरा हम लगा लेते हैं जी लिस्ट में। ये गाना होने वाला है बलोची गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस गाने को भी सुनेंगे। फरमाइश है जी अखलाक भाई की, सो लेट्स एंजॉय।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। एक और प्यारा गाना हमारी लिस्ट में है, साथ साथ हम एंजॉय करेंगे। ओके जी, टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं, यहाँ के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। लेकिन अच्छा बात जो है ना, ये आवाज जो आ रही है ये पंखे की आवाज, अगर मैं पंखा बंद करके बैठूंगी तो फिर बहुत गर्मी है, आप समझ सकते हैं, तो बस बर्दाश्त कर लीजिएगा सर। अगर चूड़ी वाले जो सोनिया जो अगर सोनी चूड़ी पाई आई है।

गाना सुनेंगे, लेकिन आपके मैसेजेस हैं तो जरा वो भी थोड़े से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाईजान कहते हैं कि दादा वैसे यहाँ पता चलेगा कौन कितना कंजूस है, वो तो सही बात है। और ठीक है बस दादा खालिद, आपने टॉपिक का जवाब दिया, कहते इंसान बुनियादी तौर पर मुफाद परस्त है, सब चीजों पर अपने मुफाद को अवलियत देता है, दैट्स वाई अपने लिए मुश्किल लगता है दूसरों को मशवरा मुफ्त। योर टॉपिक आंसर वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और अखलाक भाई जान कहते हैं कि आंसर जडही पंजा वेरी हूंदा तो पर असांजा मसला हल कोन थींदा, हर गाल में टंग अड़ाईंदा आहिनि पंजा। हाँ जाई बुध विच में वरी पंजा घर अची वाया।

0: जो गाना एंजॉय कर रही हूँ, गाने के साथ साथ हम जरा जाने लगे हैं न्यूज ब्रेक की जाने। उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आप भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जल्दी का नाम मस्ती, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
6: ब्रॉट टू यू बाय
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मां।
8: कराची जो दौरो जाली कागजन ते सफर कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमिग्रेशन काउंटर्स से भी कम कार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चाहिए सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुतबादल इंतजाम हुजन घुर्जे। इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। ईरान की इजाजत का सिवाय को भी जहाज आबना हरमुज में गुजरी न सो। पासदार इनकलाब जो अमेरिकी सदर के आबना हरमुज खोलने वाले बयान से रद्द अमल। पासदार इनकलाब मूजिब अमेरिका नाकामियों लिखाण लाए कूड़ा बयान दे रो है। ईरान खिलाफ जेस तई अमेरिकी फौजी कार्रवाई खत्म न थन्दू तेस तई आबना हरमुज में मुदाखलत बर्दाश्त न कबी। पीपल्स पार्टी पिमसाने की जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो कर छो। पीपल्स पार्टी सेनेटर परवेज शाह खान है तो पीपल्स थाने जो शाहिदू मटायण की कोशिश थी रही है। पिम्स के 3 साल दौरान 22 अरब रूपया मिलिया, रकम किथे खर्च थी ऑडिट कराई वे। पिम्स थाने के लिकाण न डनो वो
9: मतलब 5 साल की बची उसके साथ प्यार किया।
10: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
8: केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी के हरिपुर में ज्यादती बाद कतल कल मासूम आयत नूर के घर आमद। वालदेन सा रुख है हमदर्दी जो इजहार। सुहेल आफरीदी नीगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़ लाड़े वेठो। आयत नूर के वालिद के मुकमिल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई। सिंध में एचआईवी के वधंदड़ केस की शफाफ जांच लाए आजाद कमीशन जोड़ी वे। एमक्यूएम के आमिर सदीकी ठहराव सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के वलिका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केसेस की भी जांच जो मुतालबो। लागापियल ऑफिसर के भी अहदे त हटायण की घुर कई वही। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम। केस से जुड़ियल समूर ऑफिसर डॉक्टर समेत समूरन मानून की लिस्ट पेश करण की हिदायत। कमीशन गुजरियल डी थियल जांच जो लिखित में हुकुम जारी कर छो। अदालती कमीशन है तो मीर रजा जो सब का पैरी लाश डिसंदड़ नर्सरी मुलाजमन के भी नोटिस जारी कर वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार के भी पेश वे। कोडी की भरसा मीरवा कैनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश हथ 36 कलाक बाद बुडी वेल 12 वरें के मीर मोहम्मद जो लाश हथ वो। ब डी अग रक्षा उंदो थ सबब 4 नींगर मीरवा कैनाल में बुड़ी वया हुआ। 3 नींगरन जा लाश मिलया हुआ।

0: अठ सालनि जी नींगरी हबीबा हॉक्सबे जे शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वई हुई। मटियारी भरसां नाइच ऐं खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े जो हिकु ज़ख़्मी फोत। झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल मुबारक वलिद हमज़ो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम ॾेई छॾियो। खोसा ऐं नाइच धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े में पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ। कुंडरी वेझो फसल जे भेर तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि पंज ॼणा ज़ख़्मी। गोठ लखानो रिंद में फसल जे भेर तां रिंद ऐं भील बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि भील बिरादरीअ जा पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया। शादतपुर खां बिरानी विरांगे ख़िलाफ़ पैदल मार्च जारी। मांझी फ़क़ीर जी क़यादत में निकतल पैदल मार्च में सूफ़ीनि ऐं शहरनि जो वरी अंग में शिरकत। अॻवाननि चयो आहे त सिंध सूफ़ीनि ऐं वलियुनि जी सरज़मीन आहे, सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश कवेर बि क़बूल न कंदो। नबीसर रोड में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ क़ौम परस्त अॻवाननि ऐं शहरनि जी रैली। अॻवाननि चयो आहे त सिंध जे वहदत ते वार बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध हिकु आहे ऐं हमेशह हिकु रहंदी। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालनि जी नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालनि खे पीपीएचआई हवाले करण ख़िलाफ़ रैली। मुज़ाहिरीन सिविल अस्पताल खां प्रेस क्लब हैदराबाद ताईं पैदल मार्च करे एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो आहे त अस्पतालनि खे पीपीएचआई हवाले करण वारो फ़ैसिलो क़बूल नाहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। फेसगंज में बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि जो महिराण हाईवे ते धरणो। उकरी थाणे जी हद में चोरीअ जा जवाबदार गिरफ़्तार ख़िलाफ़ करूंडी डिग्री कॉलेज वटि टायर साड़े महिराण हाईवे ते धरणो वियो। मुज़ाहिरीन चयो आहे त घरनि मां थियल चोरी वापसि कराए तालके में अमुन अमान बहाल करायो वञे। सखर जे दारुल अमान में रहंदड़ औरतनि ते हमिलो करण जे इल्ज़ाम हेठि केस दाख़िल। दारुल अमान इंचार्ज मुहसरा उलवीअ जे फरियाद ते शहनीला मंगी गुनवा जतोई ऐं अरूज मीराणी ख़िलाफ़ सी सेक्शन थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो। कुझु ॾींहनि अॻु पनाह वरितल औरतनि सहूलियतूं न मिलण ख़िलाफ़ दारुल अमान जी छित ते चढ़ी एहतजाज कयो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं।
4: अक्सर वालदैन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया।
5: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Harniya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली ज़रूरु रहिजी वञनि था। पोलियो जा कुझु अॻु मसंदा
4: मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
5: FM 88 Network.

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर माथली और लाड़खाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती के नाम मस्ती। अभी सदराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। और जनाब हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो जिन लोगों ने अभी भी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। अच्छा जी, तो जिन लोगों ने अभी भी सुना है स्टार्ट किया होगा ना, उन लोगों को जरा बताते हैं कि आज मैंने आप लोगों से सवाल क्या पूछा। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है आप लोगों से मैंने पूछा वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं कि इंसान दूसरों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जल्दी दे देता है अगले इंसान को, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का हल उससे क्यों नहीं जल्दी में मिलता। अपनी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो क्यों इतना जो है वो परेशान हो जाता है और उसको अपने मसले हल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे आज आप ये बताइए। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। ओके जी, आप मुझे 8881 पर ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें सुन रहे हैं और साथ साथ फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। क्या बात है, आप लोगों के साथ बातें करेंगे और बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। कभी कभी मैं ऐसा होता है ना, यानी कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ना ऐसे वो जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी जिंदगी के बारे में बातें होती हैं। वैसे तो देखा जाए जिंदगी बहुत अजीब है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम इंसान जो होते हैं ना वो कितने खुदगर्ज होते हैं, कितने सेल्फिश होते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो बगैर किसी चीज के आते हैं, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आते। लेकिन ये चीज आपने नोटिस करी है कि हम हर चीज को हासिल करने के लिए कितना ज्यादा लड़ते हैं, रिश्ते खराब कर देते हैं, सारी चीजें इधर की उधर कर देते हैं, और जब हमें वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है, तब क्या होता है? हम अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो वही खाली हाथ चले जाते हैं, सारी चीजें वो सब कुछ ऐसी दुनिया में रह जाता है। तो इस चीज को नोटिस किया करें कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो ये आपका एक टेस्ट है, और इस टेस्ट को अगर आप सही तरीके से नहीं पूरा करेंगे तो फिर आप जाहिर सी बातें फेल हो जाएंगे। तो फेल मत होइए और अपनी टेस्ट को अच्छे से कीजिए और इतना ज्यादा चीजों के पीछे मत भागा करें, जो आपके लिए है वो आपको बिल्कुल आकर मिलेगी। और ये भी एक चीज है कि इस दुनिया में, यानी कि पूरी इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह पाक हर किसी को पाल रहा है, हर किसी को खिला रहा है, लेकिन एक इंसान ही है जिसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें जोड़ने की जो होती ना वो एक आस होती है कि भाई मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। एक इंसान ही जिनके अंदर ना मतलब यह चीज हूं बाबा असंखे सब कुछ करणो है, उनके सुबह जी भी गणती हूँी उनके कल जो भी प्रॉब्लम हों तो बाबा कल ही सब थी वो सुबह ही सब हासिल करणो है, पर हालांकि खबर न थे तो सुबह डिठो कें आए। एको इंसान ही आ जैसे जिनके अंदर एतरी लालच पैदा थियल है, पर ऐसो तुम इन पूरी दुनिया में इन पूरी दुनिया में नजाम पो हले तो जी पखी आज जानवर आने सब खाण था वे सब पीन था, पर

ख़ास ही आखे के तर कारो जोड़ो भी कहीं कहीं ते ठहे बाबा डाडो वे आपी गानो जको एंजॉय कयो पया असि सगे ते मौजूद आयो साजी दर्द दिल केती अस्सलाम वालेकुम चंदा जाने कैसी हो वेलकम वेलकम मेरे को पता ही नहीं लगा शो चल रहा है हां जी शो चल रहा है जैसे कहती वाह वाह वाह वाह थैंक यू और कहते सही कहा सब सबके पास सब कुछ नहीं होता जो नहीं मिलता उसको हंसकर छोड़ दो और जो मिलता है उस पर शुक्र करो

जी तो कारो वगो ठहंदो आहे बिल्कुल जी कोई शको नहीं गाल में और यहाँ पर कश्मीर से अखलाक भाई के तेरा गाना न हलाए हाने दे मो भाभी चवेस थी तो वी चूड़ी वी देस ना चूड़ी कड़ी वाले मांगियो आए सस्तू तो मिलंदू आए भाभी चूड़न का भी मांगी है छा भला अच्छा ये मौजूद है अच्छा जैसे तुम पेनल से मैसेज करना करना तो काइंडली नालो लाजमी लिखना कर क्योंकि खोट सर मुख मैसेज मिली वे जो नालो ही ना होंद तो जैसे तुम नालो ना ही होंद ना मैसेज में तो वरी मां सोची ना तो यो कै मैसेज करो ज्यादातर तो मैसेज की स्किप न कर छा है सो तुम अगर मैसेज लिखो था पेनल से तो उन में नालो लाजमी लिखना कर ठीक है सो मबू है तुम प्रोग्राम बुध आयो अच्छा चाचा कहते हैं बेटा सिडो अवहां अजकल कारो जोड़ो कोन था पायो नी न कारो जोड़ो कोन पाईंदा कारे खां थोड़ो परहेज कयो है

गानों एंजॉय कर गाने का पोए सानिदा सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरह उन का पोए जल्दी वापस तमारी मोटी नासी तमा करी ने मजे ते बैठा हो मा ओही वनी ओही मोटा थी सो से टू ने स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग जी एफएम 88.8 नेटवर्क आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: मोरू,
3: नौशहरो,
2: मीरपुर खास,
3: लाड़काना,
2: सक्खर
3: गूंज रही है हर जगह पर
2: सिंध की आवाज.
3: जिए
4: अभी बुधोपिया जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.
0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
7: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदें एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो. मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए. इंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन. बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए. असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए, ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी. 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए, उन्हें के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए.
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88.8 पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास नटियारी सकरण मेहराबुर माथी और लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चिल दिगना वस्ती। हम आ चुके हैं प्रोग्राम की लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जो आज आप लोगों से सवाल पूछा गया था प्रोग्राम में वो उन लोगों को बताते हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी हमें सुना स्टार्ट किया है ताकि अगर वो हमें मैसेज करें तो आप टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लें। तो आज के जो प्रोग्राम का टॉपिक था वो कुछ इस तरह था कि आपने मुझे बताना था एक इंसान जब दूसरों की प्रॉब्लम्स का उससे बताया जाता तो उसको जल्दी से उसका जो ना सोल्यूशन मिल जाता है यानी कि वो मशवरा देने लग जाता है कि सही अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके साथ ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम आ जाती है अपने पर आ जाती है तब हम अपनी प्रॉब्लम जो है वो ऐसे चुटकियों में क्यों नहीं गायब कर पाते। ये थोड़ी सी एक ऐसी बात है जो कि हम सबको समझनी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में फंसे होते हो तो हम दूसरों से मशवरा लेते हैं और यकीनन ऐसा होता है कि हम उनके मशवरों पर कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि हम अमल भी करने लग जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि भाई इग्नोर नहीं की जा सकती, इनको जरा नोटिस किया करें और उसके साथ साथ मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप मुझे 8881 पर ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे।

जी चाचा, वो गाना गिर के भी मुझे ही जा रहा था। देखे दद्दे दिल कितनी अच्छी अच्छी गाने निकाल कर आती है, कहती है गानों तवां के दीदी की तवां ते फिट करे तो। और कहती है चाचा नड़ी भी गाल कोने का। वैसे कभी कभी ये थन्द मूड से डिपेंड कन् या तो नंढी नंढी गाल मुंह खराब कर या वो ये तो वो वो गाल भी बर्दाश्त कर इंसान की नेचर है तबियत है तो या तो वो वो गाल भी बर्दाश्त कर या तो सफा नंढी नंढी चीजन नंढी नंढी गाल भी उनको मूड खराब थी मुंह बनाए वही रहो है। सो बस बाबा ये जिंदगी है इन चीजन के फेस करो पवो छो तो जे तवजा प्यारा उ अगर मुंह ठाए वही भी था।

जी बिल्कुल, ये गाना हमारे प्रिय प्यारे चाचा को डेडिकेट जाता है, चाचा खालिद जोड़ी जो कुछ। और बहुत शुक्रिया फहीम, आप इतने सारे आपने मैसेजेस कर दिए हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी मोहब्बतों का। और इसी तरह से लेते हैं जी यहाँ पर आप लोगों से इजाजत, बड़ी सुबह तहां से मुलाकात ही का मुझे थे पैया पंज बजे वाले प्रोग्राम में थी दी। सो ज्वाइन करना आई पांच ओरू सरों ख्याल रखना कितनी क्या करती थी, मुझे तो माजरत करी था जो फीडबैक रही वया जो गारो रही वया सभी का माजरत करी था। सुमक रानी ना ही बाबू सिंह सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय आई लव यू ऑल।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yuya Granular. Mitti hai jo.
8: मौसम नक वेचे तो सिस्टम डाउन थियण जे सूरत में मुतबादल इंतजाम होजण घुर्जे इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे पीपल्स पार्टी पिम साने जी जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो करे छड्यो पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान चयो आहे त पिम साने जूं शायदियूं मिटाइण जी कोशिश थी रही आहे पिम्स खे टिन सालनि दौरान 22 अरब रूपया मिलिया आहिनि रक़म किथे ख़र्च थी ऑडिट कराई वञे पिम साने खे लिकाइण न ॾिनो वेंदो
9: उसके साथ सिर्फ प्यार किया जाता
10: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा
8: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी की अरमपुर में ज्यादती बाद कत्ल कल मासूम आयत नूर के अहमद घर वालदेन से दुख ए हमदर्दी का इजहार सुहेल आफरीदी नींगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़कलाड़े वेठो आयत नूर के वालद के मुकम्मल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई सिंध में एचआईवी के वधंदड़ केसेस के शाप जवाब लाए आजाद कमीशन जोड़ी वे एमकेएम के आमिर सिद्दीक के ठहरा सिंध असेंबली में जमा कराए छो कराची के वलिका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केसेस भी जांच जो मुतालबो लागापियल ऑफिसर के उहदे तां हटाइण की घुरा कराची के व्यापारी मीर रज़ा केस की जांच कंदी कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर डॉक्टर समेत समूरन मानन जी फर्ज पेश करण जी हिदायत कमीशन गुजर डी थियल जांच जो लिखतनामो भी हुकुम जारी कर छो अदालती कमीशन चया तो मीर रज़ा जो सब का पे लाश डिसंदड़ नर्सरी मुलाजिम के भी नोटिस जारी कयो वे पुलिस

0: बि पेश कयो वञे। कोटड़ी जी भरसा मीरवा किनाल में बुडी वियल चौथे बार जो लाश बेहद 36 कलाकन बाद बुडी वियल बारन वरन जे मीर मोहम्मद जो लाश बेहद कयो वियो। बडी अग रक्षा हूंदो थियण सबब चार नींगर मीरवा किनाल में बुडी विया, टिन नींगरन जा लाश गुजरियल ॾींहुं मिलिया हुआ। कराचीअ जी अदालत 8 सालनि जी निगरी हबीबा जे गटर में किरी फोत थियण वारे केस जो फैसलो ॿुधाए छॾियो। कराची वाटर बोर्ड खे महीने अंदर निगरीअ जे वालदेन खे 1.5 करोड़ रुपया मुआवज़ो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 सालनि जी निगरी हबीबा आक्स बे जे शेर मोहम्मद ॻोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वई हुई। मटियारी भरसां पलीजाणी में नाइच ऐं खोसा बिरादरीअ जे बिंदरनि में थियल झेड़े जो हिकु ज़ख़्मी फौत। झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल मुबारक वलद हमज़ो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम ॾिनो। खोसा ऐं नाइच धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े में 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ। कुनरी वेझो फसल जे भेल तां बिंदरनि में जहिड़ो कुहाड़ियूं लठियूं लॻण सबबि 5 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ लखनऊ रिंद में फसल जे भेल तां रिंद ऐं भील बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो कुहाड़ियूं लठियूं लॻण सबबि भील बिरादरीअ जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। शहदादपुर खां भिटशाह ताईं सूफ़ियुनि जे सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ प्यादल मार्च जारी। मांझी फ़क़ीर जी क़यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफ़ियुनि ऐं शहरनि जो वॾो अंगु शरीक। अॻवाणनि चयो त सिंध सूफ़ियुनि ऐं वलियनि जी सरज़मीन आहे, सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश केर बि क़बूल न कंदो। नबीसर रोड में बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ क़ौम परस्त अॻवाणनि ऐं शहरनि जी रैली। अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ते वार बर्दाश्त न कंदासीं, सिंध हिकु आहे ऐं रहंदी। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालनि जे नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालनि खे PPE शाय हवाले करण ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली मुज़ाहिरो। सिविल अस्पताल खां हैदराबाद प्रेस क्लब ताईं प्यादल मार्च करे एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त अस्पतालनि खे PPE शाय हवाले करण वारो फ़ैसिलो क़बूल न आहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: तहजीब व सकाफत से सजी मानी,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन रहे
3: घरों इमिग्रेशन काउंटर से भी कम कार जो जायज़ वरतो मौसम अगवे तो सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादिल इंतजाम हुजण घुर्जे इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे।

0: मटियारी भरसा पलीजाणी में नाच ए खोसा बिरादरी के बिन दिन में थियल जेड़े जो एक जख्मी फोत जेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वल हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम डेई छो। खोसा ए नाच धुरन में मामूली गाल थियल जेड़े में पंज जणा जख्मी थिया। कुनरी वेझो फसल के भेल ता बिन दिन में जेड़ो कुआड़ी लठियों लगण सब पंज जणा जख्मी। गोठ लखनऊ रिंद में फसल के भेल ता भील बिरादरी ए रिंद बिरादरी धुरन में जेड़ो थी पियो जेड़े दौरान लठियों कुआड़ी लगण सब भील बिरादरी पंज जणा जख्मी थिया। शादाबशाह तई सूफिन मार्च मांझी फकीर की क्यादत में निकतल मार्च में सूफिन ए शहर जो वडो अंग शरीक अगवाणन चयो त सिंध सूफिन ए वलियन की सरजमीन आए। सिंध के विरायण वारी साजिश केर भी कबूल न कंदो। नबी सरोड में भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ कांग्रेस अगवाणन शहर की रैली। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालन के नर्सिंग ए पैरामेडिकल स्टाफ पारा अस्पतालन के पीपीए शाय हवाले करण खिलाफ रैली। मुजाहिरीन प्यादल मार्च कर एहतजाज कयो। मुजाहिरीन चयो त अस्पतालन के पीपीए शाह फैसलो कबूल न आए फैसलो वापस वरतो वञे। फैजगंज में बदमनी खिलाफ शहर जो मेराण हाईवे ते धरणो। अकरी थाने के हद में चोरन जा जवाबदार गिरफ्तार न थियण खिलाफ करूंडी डिग्री कॉलेज वट टायर साड़े मेराण हाईवे ते धरणो हयो वियो। मुजाहिरीन चयो त घरन मां थियल चोरी वापस कराए तालुके में अमन अमान बहाल करायो वञे। घोटकी में बारन की खर्ची घुरण ता मुड़स पारा मुबैना तोराम हेठ नारी के कतल करण की कोशिश। नारी पी समेत अदालत पहुंची वही। नारी चवण आए तो मुड़स नजीर चाचड़ खर्च न डी हो हक घुरण से मार कुट कर घर कढ़ी छो है। पटिशन दाखिल करण ता मुड़स कार इल्जाम हेठ कतल करण चाहे तो। सागढ़ भरसा नौजवान शेरजान मरी के कतल केस जा जवाबदार गिरफ्तार। पंज डी के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले। पुलिस चक नंबर बटी में कार्रवाई कर शहजादो उर्फ दादू ए इब्राहिम मरी के गिरफ्तार कर। पुलिस के चवण है तो जांच दौरान बिन्हीं जवाबदार शेरजान मरी के कतल को इतराफ किया। ठुला में पुलिस अहलकार मंजूल बबरानी के टिन डीह का गुमशुदगी खिलाफ वारसन जो एहतजाज। वारसन स्टेशन रोड से एहतजाज कर धरणो है। वारसन जो चवण है तो पुलिस अहलकार मंजूर बबरानी टिन डीह का गुम है का खबर न है। वारसन मंजूर बबरानी की हयाती खतरो है गोल्हा में मदद कई वही।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पक्ष
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: जिंदगी आवाज
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जिए है जो आवाज।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

0: एल से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। GAFM की आवाज,
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: पेम्स जे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरनि डिपार्टमेंट्स जे सरबराहनि खे उहिदनि तां हटायो वञे। पेम्स थाने जी जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशूं वज़ीर आज़म हवाले करे छॾियूं। पेम्स थाने जी शुरूआती जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ऐं इमदादी कमनि दौरान पेश आयल मसइलनि जो बि ज़िक्र। पेम्स में इलाज ऐं सहूलियतुनि जी खोट जो बि ज़िक्र कयो वियो। थाने जी ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ तकड़ी कार्रवाई करण जी बि सिफारिश कई वई। ज़रियनि मूजिब ॿिन्ही ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऐं नर्सरी जे ज़िमेवार डॉक्टर्स ऐं नर्सिस खे बि हटाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर खे चार्ज छॾण जी हिदायत। वज़ीर आज़म लाहौर में अहम इजलास लाइ वरितो।
1: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
2: के अंदर आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इस पर?
1: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
2: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर दिया।
1: रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: रिपोर्ट ईंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पैजी वेंदी। मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पुछो वे। सेहत वारो वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जो साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो। तारिक फजल चौधरी चयो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट अज सामू अची वेंदी।

पीपल्स पार्टी पिम साने की जांच रिपोर्ट पदरी करने जो मुतालबो कर छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवेशा खान तो सभी जो गठजोड़ है शफाफ जांच किए थी लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नीन साने जो शायदियों मिटायण की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों जो निजाम के बेबिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज कराने न था वन नई कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूल में पढ़न था इन फर्क के खात्मे तक निजाम ठीक न थी।

मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बिटीह सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यान तरक्कीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी जे खिताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इशाक डार जो चवण हो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो, जदीद हथियारनि जे ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो वियो। आईएसपीआर मूजिब फील्ड मार्शल खे इदारे जी मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशन्स ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग डि॒नी। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदा जिदत जो अज़म वरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मरियल तंजीम बीएलए जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज आपघाती हमले लाइ तयार कयल नंढे उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निंगरनि जा पाबंदी मरियल तंजीम बीएलए बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़िया लांगो चयो आहे त दहशतगर्द बलोच रवायतनि खे ख़तम करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। 40 ॾींहनि ताईं खेनि बंदि रखी आपघाती हमले लाइ तयार कयो वियो। निंगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्स ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराचीअ जो दौरो, जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमीग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतज़ाम हुजण घुर्जे। इमीग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुर्जे।

0: मतलब 5 साल की बच्ची अब सिर्फ प्यार किया
1: जाता इंशाल्लाह इनको ठंड देगी और आपको इंसाफ मिलेगा।

मौत जड़े दौरान जख्मी कल मुबारक वलद हमजो कोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दे छो कोसा ए नाइच धुरन में मामूली गाल थल जेड़े में पंज जणा जख्मी भी थी पाया हुआ। कुंडी वेझो में फसल के भेल ता बिन धुरन में जेड़ो कुहाड़ियों लठू लगन सब पंज जणा मरणींग गोठ लखा दिनो रिंद में फसल के भेल ता रिंद ए भील बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो थी पो कुहाड़ियों लठू जणा जख्मी। शहदादपुर का भिटशाह सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ प्यादल मार्च जारी। मांझी फकीर की क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन ए शहर जो वो अंग शरीक। अगवान सिंध सूफिन ए वलिन की सरजमीन है। सिंध के विरहण वाली साजिश केर भी कबूल न कंदो। नबीसर रोड में भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ कॉम्परस्त अगवान ए शहर की रैली। अगवान सिंध की वहदत से वाल बर्दाश्त न कंदी। सिंध एक है हमेशा एक रही।

0: हैदराबाद में सरकारी अस्पतालुनि जी नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालुनि खे पीपीएचआई हवाले करण ख़िलाफ़ रैली। मुज़ाहिरीन सिविल अस्पताल खां प्रेस क्लब हैदराबाद ते पैदल मार्च करे एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो त अस्पतालुनि खे पीपीएचआई हवाले करण वारो फ़ैसिलो क़बूल न आहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। फैज़गंज में बदमनी खिलाफ़ शहरनि जो मेहरान हाईवे ते धरणो। अकरी थाणे जी हद में चोरीअ जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ करूंडी डिग्री कॉलेज वटि टायर साड़े मेहरान हाईवे ते धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त घरनि मां थियल चोरी वापसि कराए तालके में अमूनमान बहाल कराए वञे। घोटकीअ में ॿारनि जी ख़र्च घुरण तां मुड़ुस पारां मुबैना तौर कारण इल्ज़ाम हेठि नारीअ खे क़तल करण जी कोशिश। नारी पीउ समेत अदालत पहुची वई। नारी जो चवण आहे त संदसि मुड़ुस नज़ीर चाचड़ ख़र्च न ॾींदो हो, हक़ घुरण ते मारकुट करे घरां कढी छॾियो। पिटीशन दाख़िल कराइण तां मुड़ुस कारण इल्ज़ाम हेठि क़तल करण चाहे थो। इंसाफ़ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: दस्तक देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: बनके मोहब्बत का सास GAFM की आवाज,
2: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: ये भाई सब इसमें आकर बोले, ये इल्तवा के बाद जाहिर है तो बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
4: सो बहस असा इन करे चाहूं था त हर सिंध जो मानो जो है इन मामले से गालाइंदो अहम मामलो है। असा चाहूं था सिंध जा मानो बुधन है उनजे असा टेक्निकली तौर पे असा जी मंडे को वठी वरी इन ते रेजोल्यूशन भी पास कंदा से।
5: पीपल्स पार्टी पारा सिंध जे इम्कानी विरांगे बाबत सिंध असेंबली में बहस लाए पेश कल रिथ जो दिफा ऐवान मां विरांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराण जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त सिंध असेंबली पहिरीं बि छह भेरा ठहराव पास करे चुकी आहे, रिथ आणण जो मक़सद बि मामले ते ॻाल्हाइण आहे। मोहम्मद अली मलकाणी चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सद मौक़िफ़ पेश करण आहे, सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ ठहराव बि पास कयो वेंदो। पिम्स जे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरनि डिपार्टमेंट्स जे सरबराहनि खे उहिदनि तां हटायो वञे। पिम्स थाने जी जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशूं वज़ीर आज़म हवाले

0: समेत समूरनि डिपार्टमेंट्स जे सरबराहनि खे उहिदनि तां हटायो वञे। पिम्सताने जी जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशूं वज़ीर आज़म हवाले करे छॾियूं। पिम्सताने जी शुरूआती जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ऐं इमदादी कमनि दौरान पेश आयल मसइलनि जो बि ज़िक्र। पिम्स में इलाज ऐं सहूलियतुनि जी खोट जो बि ज़िक्र कयो वियो। थाने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ तकड़ी कार्रवाई करण जी बि सिफारिश कई वई। ज़रियनि मूजिबि ॿिन्ही ज्वाइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऐं नर्सरी जे ज़िमेवार डॉक्टर्स ऐं नर्सिस खे बि हटाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर खे चार्ज छॾण जी हिदायत। वज़ीर आज़म लाहौर में अहम इजलास लाइ वरितो।
1: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
2: सर, आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इसमें?
1: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
2: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर
1: दिया। रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: रिपोर्ट ईंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पैजी वेंदी। मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पुछो वे। सेहत वारो वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जो साथी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो। तारिक फज़ल चौधरी चयो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट अॼु साम्हूं अची वेंदी।

पीपुल्स पार्टी पिमसाने की जांच रिपोर्ट पदरी करने जो मुतालबो कर छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपुल्स पार्टी के सेनेटर पलवेशा खान तो सभी जो गठ जोड़ आए शफाफ जांच किए थी लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नाने जो शायदियों मिटायण की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा किए खर्च थिया ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों जो इतराफ़ मुल्की निज़ाम के बेबिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कंदे मुसद्दिक मलिक कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज कराण नथा वन न ही कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूल में पढ़न था। इन फर्क के खात्मे तई निज़ाम ठीक न थींदो।

0: मुल्क की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि टीह सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यान तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण हो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: ये एफएम की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

صرف غلام کیے بادشاہ پچھاڑ دل جانے دل جانے دل جانے.

0: परवरिश देखिए हर पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GAFM की आवाज,
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
4: भाई हमने तो ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस घर को वो जन्नत बना दी।
5: जाओ जी सब तैयार, ये घर आना।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही खबीस खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वाह वाह उनको अब कहते हैं।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM की आवाज।
1: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ड्रीम एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

अक्सर माण्हू जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।

0: GFM की आवाज,
1: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहती थी। क्या ये सजा है अमन को छोड़ने की?
1: मुझे लगता है तुम इससे शादी करके कोई बहुत बड़ा तीर मार रही है तुमने। मेरी बेबसी और लाचारी की वजह से तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी।

0: मुझे अपनी जितनी सफाई देनी थी ना मैं दे चुकी हूँ। अब अपना सर काट के मैं उनके कदमों में नहीं रख सकती।
1: तुम्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए।
2: जो रिश्ते सुख देने के बजाय दुख देने लगे उनका टूट जाना ही बेहतर है।

0: छोड़ कर चली गई।
1: मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैं कैसे जी रहा था।
2: गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी की।
3: मेरी बात सुन ले, नहीं तो बहुत पछताएंगे।
4: पछता ही तो रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, पछता रहा हूँ।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान नव लगी
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज जीए एफएम की आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान जी जांच कंदड़ कमेटी जी शुरुआती रिपोर्ट ते अहम हिदायतूं जारी करे छॾियूं। ज़िम्मेवार करार डि॒नल एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 8 आफिसरनि खे मुअत्तल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमलदारनि फ़ौजदारी कानून तहत बि कार्रवाई जो हुकुम। जांच रिपोर्ट अवाम लाइ पब्लिक करण जी हिदायत। एडी पंप डॉक्टर इमरान सिकंदर, मुताहिर शाह डॉक्टर, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर नौशीना, पिम सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान, डीजी इमरजेंसी सर्विस सीडीए डॉक्टर अब्दुल रहमान के भी उहिदे तां हटायो वियो। जांच रिपोर्ट में जिम्मेवार करार डि॒ना फ़ौजदारी कार्रवाई।

0: रिपोर्ट आएगी तो उस पर पता चल जाएगा सारा रिपोर्ट के अंदर। वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
1: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतला है, आपने रिजाइन
0: कर दिया। वो रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
2: मुझे इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे सेहत व वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो कयो। तारिक फजल चौधरी चयो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट में सामू ईंदड़ खिलाफ कार्रवाई थी। पीपुल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पदरी करण जो मुतालबो करे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपुल्स पार्टी के सेनेटर पलवेशा खान चयो तो सभी जो गठजोड़ है, शफाफ जांच किनी थींदी, लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरायो वेंदो, वडन ऑफिसर के कुछ न थींदो, साने जो शायदू मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया, पैसा किथे लगा, किन खर्च थे, ऑडिट कराई वे।
3: नहीं हुई कि एक डॉक्टर की उंगली नहीं कटी, कोई नर्स जख्मी नहीं हुई, कोई फायरमैन को आग नहीं लगी और 14 बच्चे जल के राख हो गए। क्या सर्विस डिलीवरी भाई, क्या सर्विस डिलीवरी हुई, कहां थे ये तमाम लोग? ये तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स अब होगा, और ये फिक्स होगा तो बाकी गुफ्तगू होगी। इसे फिक्स किए बगैर अब कोई गुफ्तगू नहीं।
2: वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामिन जो एतराफ, मुल्की निजाम के बे बिटे मयार वालों करार दे छो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जबार पिम्स में इलाज कराण नथा वन, नई कें सियासतदान जबार सरकारी स्कूलन में पढ़न था, इन फर्क के खात्मे तई निजाम ठीक न थींदो।

0: ये शहरी के इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इस पे आकर बोले, ये इल्तफा के बाद जाहिर है जब बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
1: सो बहस अस इन कर चाहूं था तो हर सिंध जो मानो जो है इन मामले से गालो अहम मामलो है अस चाहूं था सिंध जा मानो बुधन उनके अस टेक्निकली तौर से असि मंडे को वी वरी इन रेजोल्यूशन भी पास कंदे।
2: पीपुल्स पार्टी पारा नवन सूबन यूनिटन ते बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रिथ जो दिफा ऐवान में विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह सिंध असेंबली पहरी बे छह भेरा ठहराव पास कर चुकी है, रिथ आणण जो मकसद भी मामले से गलायण है। मोहम्मद अली मलकानी चो तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौकिफ पेश करण है, सिंध की इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वो।

मुल्की मैशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 30 सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त व्याज जी शरह बि 22 सैकड़ो मां घटि थी 11 सैकड़ो थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो, जदीद हथियारनि जी ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशन ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो अज़म वरजायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आबियाती हमले लाइ तयार कयल नंढी उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निगरनि जा पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़नि इंकशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर दयाल लांगो चयो त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तम करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। निगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि।

वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे सेफी इस्पताल में कॉर्डिक विंग जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तकरीब में नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बि शरीक थियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त कराची रोशनियुनि, उमेद ऐं सलाहियतुनि जो शहर आहे। मुआशी इस्तेहकाम जो समर बि अवाम ताईं पहुचायो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सेफी इस्पताल जो दिलि वारो वार्ड सिंध समेत समूरे मुल्क जे मरीज़नि खे लाभ ॾींदो। बोहरी बिरादरीअ जूं फिलाही ख़िदमतूं साराह जोगियूं आहिनि।

0: मोहसन नकवी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतज़ाम हुजणु घुर्जे, इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुर्जे। आई वर्क फॉर सिंध, सिंध जे नौजवाननि लाइ हिकु मुकमल डिजिटल केरियर इकोसिस्टम बणिजी चुको आहे, जिते नौजवाननि खे रोज़गार जा मौक़ा, जदीद कोर्स ऐं मुख़्तलिफ़ सहूलियतूं फराहम कयूं पियूं वञनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त आई वर्क फॉर सिंध ते हेल ताईं 4,45,000 खां वधीक नौकरियुनि जूं दरख़्वास्तूं गॾु कयूं वयूं आहिनि। सिंध हुकूमत जो मक़सदु नौजवाननि खे रुॻो नौकरी ॻोल्हींदड़ न पर नौकरीअ लाइ तयारु करणु आहे।
1: उसके साथ सिर्फ प्यार किया
2: इंशाल्लाह इनको ठंड देगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
0: खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदे जी हरिपुर में ज़्यादती बाद क़तल कयल मासूम आयत नूर जे घर आमंद वालदीन सां ॾुख ऐं हमदर्दी जो इज़हार। सोहेल आफरीदी निंगरी आयत नूर जो ज़िक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो, आयत नूर जी वालद खे मुकमल इंसाफ़ ॾियण जी ख़ातिरी बि कराई।

मलीर में एजुकेशन सिटी के नाले से जमीन की वालार खिलाफ मकामी गोठान कौमपरस्तन जो एहतजाज। लिंक रोड से धरणो। कदीमी गोठन जमीन कब्रस्तान ता कब्जा खत्म करने जो मुतालबो। मुजाहरीन चयो तो मलीर की कदीमी आबादी के जमीन ता बेदखल करने वालों सिलसिलो बंद कयो वञे। सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ सियासी समाजी धुरन जो एहतजाज। शहदादपुर का भेटशाह ताई सूफिन जो सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ प्यादल मार्च। सूफी रागी मांझी फकीर की क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन शहर जो वो अंग शरीक। नबीसर रोड में भी सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ कौमपरस अगवान शहर रैली कढ़ी। मलीर में अवामी तहरीक पारा सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ एहतजाज कयो वियो। अगवान चयो तो सिंध एक हुई हमेशा एक रहंदी।

पूरी सिचुएशन है, ये मेरी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, ये पूरी मेरी आँख आँख के पास ही ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, ये मेरे मुंह से सारा खून निकल रहा है।

0: कराची जे पोश एरिया डिफेंस में औरतुनि जे झेड़े दौरान पुलिस अहलकारनि जी मौजूदगीअ जी जांच न थी। मामले जूं वधीक वीडियो साम्हूं अची वियूं। पुलिस झेड़े वारे हंधि मौजूद अहलकारनि जी बि सुञाणप करे न सघी। पुलिस मूजिबि अहलकारनि सदन थाणनि जा न आहिनि। अहलकारनि जी जांच करे रहिया आहियूं। हिन वक़्तु कुझु नथो चई सघिजे। ज़रियुनि जो चवणु आहे त पुलिस अहलकार ऐं गाॾी कोरंगी ज़िले जी आहे। शाहपुर जहानिया भरिसां मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि ॿ निंगरियूं पोत संदन पीउ पियो होश। ॻोठु बंगुल बुर्दीअ में ॿारनि वरनि जी फरज़ाना ऐं पंद्रहनि वरनि जी अरफाता फौत थी वियूं। संदन वालिद सिकंदर बुर्दीअ खे घंटी जोॻी हालति में नवाब शाह मुंतकिल कयो वियो। वारसनि मूजिबि घर में तयार कयल हलवो खाइण खां पोइ टिनी ॼणनि जी तबियत ख़राब थी। निंगरियुनि खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो, जिते ॿिन्ही दम ॾेई छॾियो। वारसनि पारां हलवे में ज़हरीली शइ किरण जो ख़दशो ज़ाहिर।
1: KTN News।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: तहज़ीब सकाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सिंध की मेहमान थी
1: जिसकी FM की आवाज
0: DAFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: GFM की आवाज,
1: GFM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, आबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: कमेटीअ जी शूं ज़िमेवार 8 आफ़ीसरनि खे मुअतल करण जो हुकुम बि ॾेई छॾियो। अमलदारनि फ़ौजदारी कानून तहत बि कार्रवाई जो हुकुम। डॉक्टर इमरान सिकंदर, मुताक़िद सैदिया रियाज़, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सर्विस CDA डॉक्टर अब्दुल रहमान।
1: रिपोर्ट आएगी,
2: मुतालबा किया गया था आपके
1: वो जो है वो वजह

0: आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
1: आपने एक रिजाइन इतलाते अपने रिजाइन को कर
0: दिया। वो रिपोर्ट आ जाएगी सब क्लियर हो जाएगा।
2: मुझे इस्तीफा बाबत वजीर साथी वजीर तारक फजल चौधरी से गड़ पेम्स अस्पताल जो दौरों करें।

0: उंगली नहीं कटी, कोई नर्स जख्मी नहीं हुई, कोई फायर मैन को आग नहीं लगी और 14 बच्चे जल के सर्विस डिलीवरी भाई ये तो फिक्स हो गया। ये फिक्स होगा तो बाकी गुफ्तगू हो, इसे फिक्स किए बगैर अब कोई गुफ्तगू नहीं।
1: वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारां पिम जे हवाले सां नाकामियुनि जो एतराफ़, मुल्की निज़ाम खे बि मिटे मयार वारो करार ॾेई छॾियो। तकरीब खे ख़िताब कंदे मुसद्दिक मलिक चयो त कंहिं बि सियासतदान जा ॿार पिम्स में इलाज कराइण नथा वञनि, न ई कंहिं सियासतदान जा ॿार सरकारी स्कूलनि में पढ़नि था। हिन फ़र्क़ जे ख़ात्मे ताईं निज़ाम ठीक न थींदो।
2: ये तहरीकारी सब इस वक्त इल्तवा के बाद जाहिर है जब बहस पैसा होगा और फिर ये बात आगे
3: असा इन कर चाहूं था त हर सिंध जो मामले से गालो अहम मामलो है। असा चाहूं था सिंध जा माण्हू ॿुधनि ऐं हुनजे असां टेक्निकली तौर ते असांजी मंडीअ खां वठी वरी इन ते रेजोल्यूशन बि पास कंदासीं।
1: पीपुल्स पार्टी पारां नवनि सूबनि ऐं यूनिट्स ते बहस लाइ सिंध असेंबलीअ में पेश कयल रिथ जो दिफ़ा, ऐवान मां विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि मंज़ूर कराइण जो ऐलान। सूबाई वज़ीर नासिर शाह चयो आहे त सिंध असेंबली पहिरीं बि 6 भेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे। रिथ आणण जो मक़सदु बि मामले ते ॻाल्हाइण आहे। मोहम्मद अली मलकानी चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सदु मौक़िफ़ पेश करण आहे। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि पास कयो वेंदो।

मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 30% मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती। मौशी इस्तहकाम बाद ध्यान तर लंडन म्यूनिटी के किताब चयो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध।